जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे, तिस साहिब की टेक नानक मणे माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लै त्याहे श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नाउ निदयावे ताए सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय।

सोरठ महला पंजवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे राम नाम मन लागा जम लजाए कर पागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहाओ नानक प्रभ अबनासी ताकि सेव ना बिरथी जासी आनंद करे तेरे दासा जप पूरन होई आसा बिलावल महला पंजवा ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखत दिया एका लिवलाई रहाओ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पय सहाई सलोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू नह छुटे निकट ना जाइयो दूत सलोक महला पंजवा मन में चितवो चितवनी उद्यम करो उठनीत हर कीर्तन का आहरो हर देहो नानक के मीत सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिए करते का होय बिचारो तित कर गावो सोहेला सिवरियो सिर जनहारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला हों वारी जित सोहेले सदा सुख होए रहाओ नित ने जेड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन असी सड़िया ज्यो होवे साहिब स्यो मेल कर कर एहो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन राग आसा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वड़ाई तोए रहाओ विश्व चस्या कड़िया पहरा थिती वारी माह होआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मलान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनता शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूरत नन्ना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध भिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब में ज्योत ज्योत है सोए तिस दै चानन सब मह चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत इस भावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अंदिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरा नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भव भरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर साध न जानिया तिन अंतर हो में कंडा है ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पावे जम काल सहे सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोब खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोहेला औद कटे दिनस रहना रे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ एहो संसार बिकार संसे में तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे एह रस अखत कथा तिन जानी
जाको आए सोई बिहाजो हर गुरते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे

वह जिह मार्ग हो जाते अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है।

जैन मार्ग संजम साधन नेमक नेमक कार्य शरीर कटावे ताव पीहा मैं मैल न जावे हर के नाम समसर काश नाही।

काति पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतद बहुमूच बहुत सियाणप जम का पहु भयापे अनक जतन कर त्रिसन नाम तरापे भेख अनेक अगन नहीं बुझे कोट उपाव दरगह नहीं सिजय छूड़ सनाही ऊपयाल मोहे ब्यापे माया जाल अवर करतूत सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सह सुपाए

मिथ्या तान तान कुटम सुबाया मिथ्या हमें ममता माया मिथ्या राज जोबन तन बाल मिथ्या काम क्रोध विकराल

सफल जन्म साध के संग नहीं काश काल दर्शन भेटत होत निहाल। साध के संग रुहत हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग इहा उहा सुहेला सा संग बिछरुत हर मेला जो इच्छे सो ही फल पावे साध के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बस है नानक उधरै साध सुन रस है। साध के संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाव साध के संग न मनते बिसरै साध संग सर पर निहतरे साध के संग लगे प्रभ मीठा साधु कै संग घट कर नीठा साध संग पै अंगकारी साध संगत पही हिमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संयोग साध की महिमा वेद न जाने जेता सुनहते तब ख्याने।

दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी कै ना ही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै हो सफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी

ज्ञानी क ख जह महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आव परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी क सदा देह ब्रह्म ज्ञानी का कथय न जाय दाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व काठ आ गुरु ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी काम तन पार नानक ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर

कौर कहीं कोड़ पर दर्ब को हिर है, कहीं कोड़ पर दुख न कर है, कहीं कोड़ माया श्रम माहे, कहीं कोड़ प्रदेश ब्रह्मा है। जित जित लाभ हो तेत तेत लगना नान करते की जाने, करता रचना

संत के दुखन ते मुख पावे, संतन के दुखन काग ज्यों लावे, संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन तृप्त जोन कृपाए, संतन के दुखन तसनाम जले, संत के दुखन सब को शैले, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावे ताए पीहि गत पाहे।

जानो ते सुखी। एक एक एक पछाने यतत कियो सोजी जाने नाम संग जिस गावन माने नानक तिन्हें निरंजन जाने गुर प्रसाद या

हृदय प्रवेश। सात निरत बूझे जे कोई नाम जपता की गत हो आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्टि सो करने हार वरना बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक जो तिस भाव सो वृतिया।

कर हाथ, मानस जतन करत बहु भात, तिसके कर तुम विरथे जात, मारे राखे वरन कोय, सर्व जियां का राखा सोय, काहि सोच कर हेरे प्राणी, जप नानक प्रभु लाखे उडाणी, बारंबार बार प्रभु जपिए, पी अमृत हो मान तन तृपिए, नाम रतन जन गुरुमुख पाया, तिसके शबर नाही दृष्टाया, नाम धन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम कसंग नाम रस जो जा तृप्ताने, मन तन नामे नाम समानी, उठ बैठ सोत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम, बोलो जास जेहबा दिन रात, प्रभे अपने जन की निदात, करे भगत आत्म के चाहे, प्रभु अपने सिंह रह समाये, जो हो आहो सो जाने, प्रभु अपने काहु कमशाने, दिसकी महिमा कौन बखानो, दिसका गुण कह एक न जानो, आठ पहर प्रभु भसे जूरे, कहो नानक से जन पूरे।

रंग राता। ब्रह्म जन जन्म पार ब्रह्म एक आप नहीं काश परम। सहस सियान पलया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइए। सफल दर्शन पेखित पनीत परसत चरण गात निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गावे सुन कर बचन करन आगाने मान संतोख आत्म पति आने। पूरा गुरु ख्याव जाग का मंत्र अमृत दृष्ट पेख है। होय संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तह लय मिलाए।

अनुदार अमृत बदन हर के गुण गाव प्राण तरन कह सुहाहु आठ पैर प्रभु भिखु नेरा मिते अज्ञान मिनसे अंधेरा सुन उपदेश हृदय मसाव मन छे नानक फल पाव हालत पालत दोए लेहो सवार राम नामे अंतर उरतार पूरे गुर की पूरी दिखया जिस मन बस है ते साज परीख्या मन तन नाम जपो ले बिलाए दुख दर्द मन ते पहो जाए

परंगास्यस्तपदि संत सांगेयम त्रिब्राह्मीठाम नाम प्रभु का लागा मीठा सगल स्मिग्री एक सकड़मा है अनक रंग नाना दृष्टा है नाव ने दे अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन संवाद अणत।

सुमाय इहते होए सुना ही बुरा उरे कहो कि नै कछ कर आप भला कर तू दे अनिकी आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज ओत पोत अपन संग राज तांगी गत मिल कहीं न जाए दूसरो न सो जी पाए तसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिस सदा सुख होया मिलाए लय प्रभ सोयो धनवंत कुलवंत बदवंत जीवन मुक्त जह हृदय भगवंत

दूर कथना कथी न आवे तोट काथ काथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक बिकसै विप्रवाह साचा साहिब साच नाए भाख्या पाहु अपार आखे मंगे देह देह दात करे दातार फेर के अगे रखिए जित दिसै दरबार महाऊं के बोलन बोलिया जित सुंतरे प्यार अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार

कोट से मृत पुराण शास्त्र न आवय चित्त मदभार शांत प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपारासन भंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनासा जान बाहु शाहानु शाहु

सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वास है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणाकर है आ जप जप थप थप अकृता कृत अमृता मृत अमृता मृत करुणाकृत है अकृता कृत तरणी त्रत अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत अमृता मृत है अजवा कृत अमृता अमृत है नर नायक है खलकायक है विश्वंबर है करुणालय है नृप नायक है सर्पायक है

नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासेन्द्र कामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुगर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते सदा सचदानंद सदरंग प्रणासी करीमल गुनंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियंग करें करीमल रहीमे छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र भुगते स्वयं भव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग अंग विभूते चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग अंग विभूते। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाशाह दसवें त्व प्रसाद सवैये सरावग शुद्ध समूह सिद्धांत के देख प्रयोग कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत कौ ना देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रती बिन एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग अनूप अतंग सुरंग सुवारे

प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया है, चोन चोन सत्र हमारे मारिया है। आप हाद है मुझे उबरया, मरण काल का त्रास निभरया, हुजो सदा हमारे बच्चा, श्री सुजू करे हो रक्षा। राख लियो मुझे रखन हारे, साहिब संसाय प्यारे, दीन मंदुष्टन के हंता, तमो बुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बब तरा, काल पाए शिव जू अवतरा।

जेते बदन सिर सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब हीते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्बेकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जागो भेवना पावत भेदा, ताको कृपान अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का छीनत न भिव, आप अपनी बुद्ध जेती बरनत भिन्न भिन्न तो तेती, तुमरा लखा न जाहे पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा, एका रूप अनूप सुरूपा, रंग भयो राव कहीं पुपा, अंडा जेर सेत जगीनी, उद्भुज खान बहु रच दीनी, कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पे हो संकरे कैठा, सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, या जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अभ्रच्छा बेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जते उठवत तो पाता, सकल मलेश करो रणकाता, जे आस तो ज ताब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे, पुरख जमन बग परे ते हारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल कोई कबार त्याय है, ताके काल निकट न है, रक्षा हुए ताय सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दुष्टन जाय ने हरो, ताके ताप तनक मैं हरो, रिद सिद्ध कर्म सब हो, दुष्ट शाह शब सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो, कहा दार दुष्ट दोखते रहा, खड़केत मैं सरन तिहारी, आप हाथ दे लेहु उबारी, सर्व ठावर मोह सहाई, दुष्ट दोखते लेहु बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सम्राता, गिलवे सकल देखो हरता, दुष्ट दुखियन को क्षय करता, श्री अस्तुज पहे दयाला पूर्ण करा, ग्रंथ तकाला, मन वांछत बल पावे, सोही दुख ना दसे ब्यापद कोई अड़ल, सुने गुंग जो जाहे सो सुना पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाओ निगना तिन नर के रह, हो जो जाकी एक बार चौपई को कहे चौपई, संबत सतरह सहस पण जय, अर्थ सहस सुन तीन गे जय, भाद्र सुधी अष्टमी रबवारा, तीर्थ धर्म ग्रंथ सुधारा, सवैया पाए गहे जब थे तुमरे,

अंतरो जनका मोह थुट्ठा तनका शब्द सच्चा सवारिया कहे नानक एहो आनंद है। आनंद गुरते जानिया बाबा जिस तू देह सोई जन पावे पावे ता सो जन दे जिसनू हुर गया करे विचारिया। एक परम पुले फिरे दहद सनाम लाग सवारिया गुरु प्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा भावे। कहे नानक जिदे प्यारे सोई जन पावे आवो संत प्यारे वो कद की करे कहानी करे कहानी अगत करी द्वारे पाईया। तान मान धन सब साम गुरु को हुक्म मन्ने पाईया हुक्म मन्ने हो गुरु केरा गावो सची वाणी। कहे नानक सुनो संतो कथे अगत कहानी। ए मन चंचुला चतुराई किन ना पाया चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जने भरम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जंट।

मूर्ख पंडित एक मत जसन जे करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जितना जाने।